0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्कार पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
2: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
3: कोटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
2: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
3: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
2: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: चेली हेदी बालाई लोटरी पड़ो बुढ़ो क्या बैंक को विवरण दिया पैसा खाता नहीं आई जान बुढ़ो
2: धैदे बा तुमने लोटरी भर रही थे अब
3: आठ ना क्या हो रे चेली लोटरी पड़े तो निको हो
2: कभी नबरिया लोटरी कसरी पढ़न बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर कायमीले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाल गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन।
4: सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ
2: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
6: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा
7: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमडीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलोजी
8: डाक्टर आउने दिन असार 7 गते आइतबार समय बिहान 10 बजेदेखि
7: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
8: उपचार हुने समस्याहरू
7: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
8: साथै मुटुको इको रगत जाँच र ईसीजी पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14300 र 98486-39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।

0: होइ रजनी हो वहाँ बाँसक नम्बर लक्ष्मी बा देखाउ त कस्तो देखाउ त
1: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लक्ष्मी खा दे दिए अपना
0: एक तो तपा बाका मुर्गिन फार छे लक्ष्मी से डुरेले से बक्था की आनो हारी छट्टा
1: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस सकन बेन घर भीतर आई लागी कलते भगेबी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खोज लखो का
1: आरम में कीड़ा फटिंदा मुँह साफ सीर निशा कर कहीं का फलाम को जारी लगा ले पाते तब पर मुर्गी खेती बुगाई नहीं से की बेन अपना न दाखी दूर रह बिना
0: हो बिना था का करना हो सब पर देखती की जन नागर लगना रही था देव सब पर तो अपना घूम का बारी

0: काफी कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाय।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो दंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानिक 9 बजे के खोज खबरमा आफ्नो स्वागत बा। खोज खबर से मै सीता चौधरी के राम राम। अपने हुक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्र ओ नेपाली पात्र मफे सुन्टी घरबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गाउँपालिका के बजेट 1,12,00,000 प्रशासनिक भवन खानेपानी निर्माण प्राथमिकता कक्षा 12 के नतीजा सार्वजनिक धनगढ़ी के आकाश देशमी उत्कृष्ट टीकापुर के हेमंत साउत अन्ला 3.88 जीपीए विश्व सिकल सेल सचेतना दिवस के अवसर में टीकापुर में सरकारवाला संग अंतरक्रिया सिकल सेल के विरह में हुक्रा थुप्रे समस्या झेल्दी बैटरी में यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुलक एकजना को मृत्यु दर्जना घाइते फीफा विश्वकप फुटबल 2026 अमेरिका द्वारा अस्ट्रेलिया पराजित जानकी गाउँपालिका के आर्थिक वर्ष 2083-84 के लायक 1,12,25,00,000 रूपया के बजेट टनलबाट गाउँपालिका के 18 अधिवेशन के दोस्रो बैठक में शुक्रवार जानकी गाउँपालिका के उपाध्यक्ष लालमती कठरिया उक्त बजेट पेश करलबाटी बजेट मचालूतर्फ 46,24,41,000 रूपया हो पूंजीगततर्फ 66,01,023 रूपया छुटिलोबाट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन का विनियोजन कला खर्च विहोना स्रोत मध्य आंतरिक स्रोत मस्ते 3,00,00,000 राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरिएको पालिका के खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 48,30,00,000 विनियोजन कलबाट पूर्वाधार विकास क्षेत्र अन्तर्गत पालिका के प्रशासनिक भवन के लाग 6,50,00,000 बजेट छुटिलोबाट वस्तकर के लायकपुर जगतपुर मुर्तिहा कटासे हाइड्रोपावर रोहिती राजमार्ग जोड़न सड़क कालोपत्रे 1,50,00,000 विनियोजन कल सफे वड़ातर्फ 3,15,00,000 विनियोजन कलबाट सभा में वड़ा सदस्य झपट प्रेमी खगेन्द्र सुनार लगायत सभा के छलफल में भाग ले रहे सभा के सदस्य उठक सवाल के जवाब देती गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी कम बजेट हम प्रभावकारी रूप में परिचालन करना योजना बनलक पालिका में शिक्षायन आयल पा सके विद्यालय के शिक्षक व्यवस्थापन कर सकना जानकारी कर ले रहे सभा के विनियोजन विधेयक को हेसंग अंतर संबंधित आर्थिक विधेयक के पारित कलबाट गांवपालिका में उत्कृष्ट काम करना कर्मचारी संतराम कठरिया अनिल चौधरी श्याम किशोर चौधरी सुरेश कठरिया मंजू चौधरी कृष्ण चौधरी सुरेश कठरिया शिक्षक भोजराज चौधरी सविता कृष्णी फर्म शीत बंगुर फर्म रोशनी ग्रामीण विद्युत सहकारी लगायत सम्मान करना निर्णय हुलक गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भानु भट्ट भक्त जानकारी गर्दै रही भजरी नगरपालिका के विश्व अधिवेशन के आर्थिक वर्ष 2083-84 की नीति तथा कार्यक्रम पारित कलबाट शुरू हुलक अधिवेशन के पहिलो बैठक में भजरी नगरपालिका के नगर प्रमुख केवल चौधरी नीति तथा कार्यक्रम पेश कलबाट सभा के नीति तथा कार्यक्रम पारित कलक नगरपालिका के सूचना अधिकारी चन्द्रदेव भट्ट बटेलबाट बैटरी के दशरथ चन्द्र नगरपालिका 4 शाही लोकी स्थित दशरथ चन्द्र राजमार्ग शुक्रवार संक्षेप यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुलक एकजना की मृत्यु हुला सफेद 10 जना घाइते हुलबाट धनगढ़ी मस्ते बैटरी तर्फ जैटी कलक सुदूर पश्चिम यातायात के सु प्र 01001-3646 नंबर के बस संजय करीब 5:40 नियंत्रित होके सड़क में से करीब 30 मोटर तर खस्के दुर्घटना में पर्लक जिला प्रहरी कार्यालय बटेरी जनैलाबाद प्रहरी के अनुसार पाटन नगरपालिका 8 के 27 वर्षीय चालक केशव सिंह महाराज चलक बस दुर्घटना पर्के दशरथ चन्द्र नगरपालिका 6 के 35 वर्षीय वीरेन्द्र बहादुर चन्द के मृत्यु हुल रह चन्द के उपचार के क्रम में जिला अस्पताल बैटरी में मृत्यु हुलक प्रहरी जनैलाबा बस में चालक सहित 12 जना सवार अलग चालक सकुशल रहलबाट दुर्घटना में घाइते हुलक 10 जना के जिला अस्पताल बैटरी में उपचार हुई रहा घाइते मध्य अधिकांश के अवस्था सामान्य रलक प्रहरी जनैलाबा खोज खबर में एक विश्राम विश्राम पाच फिर से विश्व तिरवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगरपालिका को निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड बारे अत्यंत जरूरी सूचना टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू: वडा नम्बर एक असार छ गते एकता नगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर दुई असार सात गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर एक असार आठ गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर तीन असार नौ गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर एक असार दस गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबोधन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस, टीकापुर कैलाली, सञ्चालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित कक्षा बाह्रकी परीक्षामा धनगढ़ी स्थित ग्यालेक्सी माम्बिकी विद्यार्थी आकाश ठगुना विज्ञान संकायतर्फ 3.96 जीपीए हासिल गर्दै देशकी उत्कृष्ट विद्यार्थी बन्नबाट इन्स्याका 2080 सालकी एएससी परीक्षामा फेरि आकाश संस्थागत विद्यालयतर्फ धनगढ़ी उपमहानगरपालिका सर्वोत्कृष्ट ग्रेड हासिल गर्दै ग्यालेक्सी माभि विगतसे नै एससी तथा कक्षा बाह्रकै परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दैलोबाट इन्स्याक 2079 सालकी एससी परीक्षामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा से एकजना विद्यार्थीकेले 4 जीपीए प्राप्त कलर ग्यालेक्सी माभिके छात्रा नितु विष्ट उक्त उपलब्धि हास कलर रही। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा बाह्रकै नतिजा सार्वजनिक कलबाट कक्षा बाह्र म 61.17% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुलबाट शंकरकी वीरेन्द्र विद्या मन्दिर मावि टीकापुरकी विद्यार्थी हेमन्त बहादुर साउत 3.88 जीपीए प्राप्त कर्लही। साउथ एससी मफे 4 जीपीए प्राप्त कर्लही। वीरेन्द्र विद्या मन्दिर विज्ञान संकायतर्फ 21 विद्यार्थी मध्ये 15 उत्तीर्ण हुलेसफे उच्च जीपीए 3.88 रहलबा। कक्षा बाह्रमा हालसम्मकै जानकारी अनुसार गणेश बाबा इंग्लिश बोर्डी के स्कूल टीकापुरमा से 2 3.73 जीपीए प्राप्त कर्लबाट शंकरकी कर्णाली मावि टीकापुरमा 38 विद्यार्थी मध्ये 14 उत्तीर्ण हुलसेफे। कर्णाली मावि टीकापुर मसे 1 विद्यार्थी 3.28 जीपीए प्राप्त कलबाट जनजागृति मावि सीतापुरमा 56 विद्यार्थी मध्ये 14 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुलबाट। सीतापुर मसे 1 विद्यार्थी 3.48 जीपीए प्राप्त कलबाट। खडकी स्मृति मावि टीकापुरमा 213 विद्यार्थी मध्ये 43 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुलसेफे। कर्णाली मावि सतीमा 62 विद्यार्थी मध्ये 7 उत्तीर्ण हुलबाट। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिंचाई सुविधा किल्लाक 9 किसान हुकन सानो ट्यूबलेट वितरण कलबाट वडा कार्यालय वडाकै 75% किसान 25% लगानीमा ट्यूबलेट वितरण कलबाट सिंचाई सुविधा नहुलक ठाउँमा सिंचाई सुविधा पुगेन उत्पादन वृद्धि गर्न उद्देश्यकी वितरण कलक वडा अध्यक्ष लालवीर चौधरीको कहाइबा वडाकी हरेक वर्ष किसान हुकन सिंचाई किल्लाक सघेनाइलोबाट 9 वर्षमा गरीब 100 किसानको ट्यूबलेट वितरण कलक चौधरी बुटिलोबाट वडा नम्बर 4 ग्रामीण विद्युत सेवा विस्तार मसखेलोबाट किसान के खेतसम्म विद्युत सेवा पुग्ल किसान सिंचाई मसह चुना हुल केही वर्ष 2 किलोमिटर विद्युत सेवा विस्तार मसखेलक वडा अध्यक्ष चौधरी के कहाइबा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि सेवी सुन्तिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुरहेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
6: मै नै जाइ, उहाँ आफन अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइतो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के 2 शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846-77417।
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा। अत्याधिक गर्मी भर्ती गरेपछि टीकापुरकी विद्यालय विद्यादेलबाट नगरपालिकाकै शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार असार 6 गते से 21 गतेसम्म विद्यादेलबाट गर्मी विदा 16 दिन देखसेफे वास्तविक विद्यालयमा पढाइ हुना दिन 12 दिन विदा अलग टीकापुर नगरपालिकाकै शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थी बुटलोबाट अस्तक कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा 12 दिन विदा दिन निर्णय कलबाट नगरपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमकी अनुसार यही असार 8 गते से असार 19 गतेसम्म गर्मी तथा बर्खे विदा एकमुष्ट मिलाएकी विदा दिन निर्णय कलबाट उक्त विदामा विद्यालयकै वार्षिक विदा लम्मा विदा मसे कट्टा हुना बा 5 दिनमा अत्याधिक गर्मीकै कारण विद्यार्थीमा विद्यालय आऊ जाऊ कना कठिनाई हुन लागल पाछ बाल बालिका के स्वास्थ्य ध्यानमा धती विदा दिन निर्णय कलबाट। आफ खेल खबर, फिफा विश्वकप फुटबल 2026 अमेरिका अस्ट्रेलियासँग पराजित गर्दै नकआउट चरणमा प्रवेश कलबाट अमेरिका के सिटेलाइट स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा अस्ट्रेलिया 2-0 गोल अन्तर्गत पराजित गर्दै अमेरिका नकआउट चरण प्रवेश कलबाट विश्वकपमा अमेरिका के लगातार 2 जित हो। यससँग आफ्नो पहिलो खेलमा अमेरिका के प्रावज्ञ पराजित गर रहे। अमेरिका के जीतमा एलेक्स फिरबियाम 1 गोल कलसेफे 1 गोल उपप्रहार प्राप्त कलस। खेल शुरूआती 11 मिनटमा अस्ट्रेलिया के क्यामरून वर्गेस के आत्मा खाती गोल मार्फत अमेरिका के पहिलो अग्रता दिलेल। अस्ट्रेलिया के डिफेन्डर क्यामरून क्लियर कनाक्रम प्रहार कलक बल आफ्नो गोल पोस्टमा छिर्लक अमेरिका अग्रता लिन अवसर प्राप्त कल। वकर पाछा खेल के 43 मिनटमा अमेरिका के एलेक्स गोल कर्ती टोली के अग्रता दोब्बर बनेल। वकर पाछा खेलमा गोल हुई नै सकल। अझ त अमेरिका के अस्ट्रेलिया के ऊपर 2-0 गोल अन्तर्गत के जीत निकल। ए जीतसँग समूह डी मर्लक अमेरिका के 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्लबाट। यह समाचार संग खोज खबर वर्ल्ड जना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक चौ जना की गांवपालिका के बजट 1,12,00,000 प्रशासनिक भवन खाने पानी निर्माण प्राथमिकता पक्ष बालकी नदीदा सार्वजनिक धनगढ़ी की आकाश देशमा उत्कृष्ट टीकापुर के हेमंत साउट 3.88 जीपीए विश्वस्ती कसल सचेतना दिवस के अवसर में टीकापुर में सरकार संग तर्किया सिकल सेंट के मित्र धेवर समस्या झेल्टी बैठक में यात्रु भाग बस दुर्घटना हुलक एकजना की मृत्यु 10 जना खाइते विश्वकप फुटबल 2026 अमेरिका द्वारा अस्ट्रेलिया प्रायोजित टीआबकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद टीआबकला खोज खबर से मैस्टा चौधरी बिदाई टू एक पाठ 12 बजे की खोज खबर सुना सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रसन्न सुनती रवि राम राम।

0: पीआरबीटी 01300030660 पीआरबीटी 602466 पीआरबीटी 01300030660 पीआरबीटी 602466
1: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई
2: उफ बल्ल घरक भेटा निखो रहिदा
3: मुस्कान पिछाई घरक भेटा आमी निके निउराई छ कि का खेतो बस खालन का लाग मिनी ले जाई पना रह
2: आबो उराइदा जानती बादा
3: ले ले वही मिनी बना कर भेजिए तू ले जा दिस ना
2: हाँ बैठा दाई ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला को बा माटी ने सब दिए पड़ो कि का हाँ सब दि दाई सब का डरल
3: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
2: यहाँ दाई ये दाई राज का डरल
3: अरे ले हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान हट सब का डरलस लेव हाली
4: काहिल काकी काहिल
3: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस करलप
4: ना त्याव काकी तो मुस्कान निया त्याग का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान है ना स्वास्थ्य का ना सुटाई हर सब निकाल रखना
3: उठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो टा
2: उठा
4: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा घर गहना निकब जैना मेकअप फांसर बना रही था वो हाथक चुड़िया की निकाल दी था वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था
3: बैठा भैया सब को कटला ठाक आंदर पांदर चिर कर इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकले ना हो कि
4: नहीं नहीं काकी सब को कटला घाव आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई फे नहीं हुई पानी फे नहीं बुझली
3: उसी नो कल से झर मेरा लांग था वही नीटार था वाकर सब को कटला ठाम और लगा दियो टना नानू
4: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जड़ी बुटी फे प्रयोग कराने हुई बुझली
3: बुझनु नानु बुझनु
4: बिना काकी रामेशाना मोटरसाइकिल लिखाए कही झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादाई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल .org का वेबसाइट खोलती कर तू मई हाँ डाटा अन कह कर हरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट फिर खुला हाँ हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंश उपचार कई जिना रही था हो वहाँ ले जाए पुरा मुस्कान होना
3: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला
4: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान होना बताई सीख जाए
3: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
5: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने दिखाई सकल से भूख सपो विषाह अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
3: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सकती था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सकती था सपवा डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई खा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल नेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउन का साथ साथ विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो हो त, जाने विचार छ कि नै?
8: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पनि भाँची गयो।
7: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याक्ट्री बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
8: आज त सन्तेका बाले मनकै पुरो हर्यो, त बाई जाउँ।
9: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
10: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 6 गते, 13 गते र 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
11: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
12: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
13: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
11: डेलिभरीका लागि
13: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
11: टिकापुर कैलाली,
14: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870-10672।
15: स्वास्थ्यका लागि पानी।

0: गरेको भए होइन गरिहाल्नुहोस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: ए रुक रुक रुक, के भयो, किन कराएको यस्तो?
3: दाई यस्तो पनि हुन्छ र, 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे।
4: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
3: हो र। हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
5: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
6: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
7: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: एसईई मा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना
4: भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
3: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला।
4: भर्ना हुने विषयहरू
3: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
4: नेत्र विज्ञान ओए
3: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र
4: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969-59-0044 98587-80044 र 97642-89921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np।
5: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
6: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
5: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
5: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
7: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
6: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 98487-1828

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखो तुहिन, टीकापुर बाजार में देखो तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 6 और 7।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुत्रुके छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना रासनका गरगनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 9868147 99 2460 2532। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 9924628825।
3: विद्यार्थी
4: भैया बाबु तुरते कहो मोर सप डेबो कर से न चलाए नि बिठा सप मूला से वाकर मरहल बीस असर निकलत खाना नि हो जिति मोर सप्पा मोर देख पर्ना सपहना नंता हाथाले पकड़ानी हुई
3: सर मोर सप्पा देखना से का करना
4: सप्पा मोलस देख पर्ना से थे जाग से मोल नी रह सकत अथवा मुलक कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्षे मोल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नी हुई बेंतन इतना मल अच्छी ले चला था मोल नी मोल कही था जाना से भी था
5: मोल सापन से सावधान रही मोलवा मार गई सपोहना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर भाषा सम्फी सपवा दस सिठा सम्भव हुई सम सपो फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
6: पर पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएला आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेभिठा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
2: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
1: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही।

0: हि स्वया पुग्नु तपदस्त दरम्यान रसरस अन्नमा ल्यान पुगसे हिँडरह
1: एक गति ना हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टी बाटी देन मोटरसाइकल घुमाको धर्ने करिना
0: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुई सेक ना पिला कोसे पासा से पकड़ का बैठा पड़ता का
2: ब्रह्म्याना अगर हुना कई कमई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक तरफ से बाट सजिला से वो छत्त पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरक सुचाक लगक एंटी भेनम हुई उपचार केन्द्र में लै जाय पड़ता
1: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान लगा सके राजे
0: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो हुई था उपचार करना से सजिलो हुई था
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई थी
3: सफर दस डालन कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदम से उपचार केन्द्र में लै जाडारी सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
7: असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डी फोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
8: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
7: दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे था लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जेबो पाछ से शुरू करल मने घर सीजा सेकल
4: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कही ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना ओट फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर रही थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगला दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन् त बाउ के पाउँछ त्यहाँ?
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
7: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
4: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ।
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
9: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
8: प्रोपराइटर पुष्पराज देवकोटा, सम्पर्क फोन नम्बर 98484-48673 र 98148-60204।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: स्थापन र कटाई से भइसकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश
2: नमस्कार सर्पदंशले भुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरूद्ध जनचेतना जगेना उद्देश्य लेख अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा आफ्नो स्वागत बा मै पुष्पा
3: ओ मै एकराज आज कार्यक्रमको दोस्रो पैदा आज हाम्रो सापनको दशामसी बोचकलाक आफ्नो घर आन्दर पान्दर सफाई गर्न महत्व काकर बाना विषयमा संवाद गर्ने बाँकी
2: सापनको दसैँ मसे बच आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाई गर्नक महत्व का करबा ओ कसिक सरसफाई करसेक जिठा कना विषयमा हमन सर्पदंश विज्ञ मधेश प्रदेश जनकपुर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर जामुन सिंह जानकारी देनेबाट
4: हाम्रो घरको वरिपरि अलिकति सकिन्छ भने अलिक चिप्लै गरौँ चिप्लोमा सर्पहरू त्यति जाँदैन उक्लिँदैन हिँड्न पनि सर्पलाई चिप्लोमा गाह्रो हुन्छ होइन उनीहरू जान पनि खोज्दैन उज्यालो भयो भने झन सर्पहरू भाग्छ उज्यालोबाट त्यही भएर हामीले राति एउटा बत्ती बाल्ने गर्छौँ प्रायः जस्तो त्यस्तो ठाउँहरू छ भने बत्ती बालेर राख्यो भने सर्पहरू अलिकति लाइटबाट उज्यालोबाट टाढै भाग्न सक्छ
3: आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाई निकर्नसे वा कर निसक्नसे हमन कसिन सर्पदंशक जोखिम उठा कना विषयमा जानकारी दिन बिन्दु वा हुङ्कमा रगबटको एक दोस्रो भाग फेरि हाम्रा सुनबी
5: नथु काका यहाँ सुनि त
6: हजुर बिन्दु नानी होइन
5: काका आपी गरेका सफा यहाँ काका आए थाहा बात नहन
6: थाहा निको त
5: काजे कलसे काका आजकल बर्खक समय बा जसो बर्खारी म साफ सुक्खा ठाउँमा बस्न मन परेट यी मौसममा हङ्कनक बस्न बिलामा पानी बस्न हुँदाको सुक्खा ठाउँ खोजी म बाहर निक्लछ
7: ऊ आहार खोज्न क्रममा जस्ता कि मुस मुर्गी जसिन खानाका खोजी गर्न बेलामा फे साप मानव बस्तीको लगाइसक छ
2: चलनचत्ती बोलीमा सापनका कटाई कैगिला सिखे हाम्रो कार्यक्रम जीवन सन्देशमा यी हन सापनका दसाई हो सर्वदंश कैख सम्बोधन कर्मी
3: सापनका ढिउ जसिन प्रजाति र मरिन हानि निकर्दा मेरो जोर छ ढिउ सापनका प्रजातिमा बिल्कुल बिस्ने रटन हुक्र याटर आहार आन आफ्नो शरीरले दरपटाक श्वास अवरोध कैकमर्छ वा आहार आन जमिनमा टाप खमर्छ वा जिटिह लिन्दछ कुश सापनको प्रजाति मुहमरान विशेष मेरिक ग्रन्थी बसे रस निक्लै छ जेले आहार आन लट्यास बनेन मोइना हो पसिनामा मद्दत पुगेछन्
2: साप डन्डुरो सुक्खा ठाउँमा बैठ्न मन परेछ बर्खा छ्याक समयमा आफ्न बासी स्थानमा पानी पेट्न हुँदा पर्से सुक्खा ठाउँ खोजीमा हिग्र बहार निक्लछ मुस लखरिल्या मुर्गी जसिन आहार खोजिकन क्रममा फे सब मानव बस्ती लखनका आइसक छ
3: बर्खाछ्याक अर्थात साँप बाहिर निस्कन मुसम्म आफ्नो घर आन्जर पन्जर सरसफाई गर्न से सर्पदंशे बच्चा जिठा आफ्नो घर आन्जर पन्जर रहन ढ्याङ घाँस काट खर फोहोर मैला व्यवस्थापन कै खर साँपनको दसैँ मसे बच्चा जिठा याद गरी साँप अस्ते ढ्याङ घाँस फोहोर बनुवा रहन ठाउँमा तथा आहार खोजीमा अनाज धर ठाउँमा नुख बैठक रहेछ छ
2: आफन घर आन्जर पान्जर सरसफाईको महत्व विषयमा सहभागी श्रोता होगन प्रतिक्रिया सुनि हाम्रा मेरमेरन तिल्ला कुछ श्रोता सहभागी होगन मनसुन वा बर्खा छ्याकमा आफन घर आन्जर पान्जर कै फेरा सरसफाई गर्थी ओ का कर गर्थी कैख पुष्पबाटी
8: मोर नाउ बासमती थारू सरपञ्च बस्ने हाम्रा घर वरिपरि सफा कैना जरिया जब साग कैना इटक टुक्रा थुपारले ऊ सब एक ठाउँमा व्यवस्था गर्न दूर ठाउँमा आउर जुन मौसमके बिलार हट जुन पुनके चबटके सफा कैन
9: मोर नाम देवीराम चौधरी हो तपाईँसे बसेक त हामीले घर वरिपरि सफा गरेको पट एक नम्बरमा दोस्रोमा घर आँगन वरिपरि सब सफा राखे उपकरण विभिन्न किसिमका औषधिहरू छरेक परट झारहरू उखारेक परट घाँस पातहरू नाइ राखेको देखेको परट
10: कालठी थारू साफ रहना वाला बढ़िया से ओकर घर बढ़िया से घोटेल कैले रहो सफा रख ले रहो रोनर वोनर रही तो टुबुले झापले रहो बढ़िया से सफा घोटेल कैले रहो साफ गोजा नहीं आवे कीड़ा फटिंगा नहीं आवे रात के सूर्य बाजी बजारे बढ़िया से लगा ले
11: मोना संजू कुमार थारू हो सापन से बचना तो पहले शुरू मैंने नट्टी बजरार चाहू ना वरीपरी तो सफा चले तो झाड़ सफा रही तो मैंने वही रुकना ठाव ना रही तो आई ना फिर मैंने कम रही
12: मोर नाम पुष्पा चौधरी हो सरपंच के तो कैसे बस क्लाक अपन घर वरी परी सर सफाई रखे परत घरे में मुसन के जौन बिल्ला रहा ठुका सब पुणे परत और टॉयलेट के वरी परी सफा कर एक परत बाहर के बिजली रात के बार देना ना बुटेना वो बाहर जब निकले लगभग तो टॉर्च लेके निकलना
11: कालू राम सिंह सर्वप्रथम तो अपन घर के वरीपरी सफा सुघर झंझंखर नहीं राख भी सब घर सफा रह पड़ल मुख्य कारण से सापन के बचक लगी रात बिराट जो व्यवस्था रोजगार के आवश्यकता प्रथा करना पड़ल लाइट वाइट भी पड़ल
12: मोर नाम सुखिया ठारू अपन घर वरी पोरी तो सफाई सर सफाई करे पड़त अपन घर में बिली बिले रही तो अपने सफा करबो तो अपने घर खुर्सियान रही मना खेत खुर्सियान रहा आज हमारे सर सफाई ना करा तो ओरी पोरी फोर नहीं तो हमने घर तो कचरा गंदा रही तो ऐसे तो साफ गोदर चल रही तो सर सफाई करबो
3: हमारा भक्कर सुनली अपन घर आंजर पाजर का सर सफाई के महत्व विषय में हमारे श्रोता सहभागिन का विचार वहां उनका मध्य कुछ मन महीना में कमती में एक फेरा और कुछ मन 15 दिन में घर आंजर पाजर सर सफाई करना कर बटल ओसिया का घर आंजर पाजर का फोहर व्यवस्थापन करना कर घर में रहल फंग तथा भूये में रहल बिला चपलना कर बाटफे बटल
2: बरखा छैक में हमार घर आंजर पाजर घास सांख छपास बन सकता कोक्नी धान कोदो लगायत का अनाज का बाली ले फिर खरक आंजर पांजर छपास बने लगा सर्प ध्यान खास फुहर का खुर्रा बलमारो का ठीक कटकौरा में नुक का बैठल रह सकता
3: और बात हमारे खाद्यान्न भंडारण कर मूस लखेलिया नुक का बैठल रह सकता उसी ठाव में आहारा लिओ से पाली नाम से साथ अनाज रहना ठाव में आकर्षित था हमारे अनाज व खाद्यान्न भंडार कर मूस लखेलिया वो चिरै घाट निश्चित नापेका भण्डारण गर पठा
2: सापनका दशैं मसे बच्चा आफन घर आन्जान पान्जार सरसफाई गर्न महत्व का करबा ओ कसीका सरसफाई गर सिक्दै ठाकना विषयमा मधेस प्रदेश जनकपुर हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर जामुन सिंहसे बातचित गर्नबाटी
13: नेपालमा विशाल सांसदबाट सात तेठो प्राकृतिक जीव फिट याकर सँगसँग जैविक विविधतामा हिकनक आफ्नो स्थान बाटन लेकिन यहाँले करबेर खास गरी भित्री मधेश तराईको कुछ पहाड़ी क्षेत्र वा उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा समेत सर्पदंशको घटना हुइटिरहल्बा हमारे यहाँ कुछ ओसिन तथ्याङ्क बात याकर दसाई वो याकर क्षति का विषय में
4: सर्पदंश को बारे में हमारे देश
14: सर्पदंश के हिसाब से हमारे देश बहुत पीड़ित हो और देश का तुलना में हमारा ट्रॉपिकल रीजन गर्मी क्षेत्र में पर्थी हमारे देश का आधा जनता मध्य पहाड़ी से लेकर तराई से मिहिर विकल से घन बस्ती यही बा देश का पीटीआई जनता ट्रॉपिकल रीजन गर्मी क्षेत्र में बैठ ट्रॉपिकल रीजन पहाड़ क्षेत्र फिर गर्मी जो बा वो हमारा वह क्षेत्र में बैठी वो वास्तव में यह क्षेत्र में सापन का कटाई अत्यधिक बा 50-60 हजार का आसपास में सर्पदंश हुईलक सही बात हो वो मृत्यु 3-4 हजार का आसपास में हुई बा पाचक चरण में क्रिटिकल केयर का फैलावट बढ़ती गई बा कोविड पाछ वेंटिलेटर का सेवा हमारे बा लगभग सको प्रदेश में बा वो जनता का पहुंचो फिर बा एकदम व्यस्त तो रखा लेकिन कसों को से फिर व्यवस्था मिला जाए लेकिन यही में सबसे भारी चुनौती का होगा से लगभग 80% मृत्यु अस्पताल पुग्न से पहले जो
4: अस्पताल पुग्न भन्दा पहिला नै हुने गरेको छ
13: करक आंजर पांजर समुदाय समाज में सरसफाई करना से सर्पदंश से बचना उपाय हो यहाँ कसी का व्याख्या कर देवी
4: हामीले प्रिभेन्सन भन्छौँ 80% मृत्यु
14: हाम्रो यही होइन प्रिभेन्सन कठिन 80% मृत्यु अस्पताल पुग्न से पहिलो हुन्छ यहीमा अस्पतालको रोल 20% अहिले अवस्था भयो अब यही होइन प्रिभेन्टिभमा गएर से साँप कटबो नाकर इडर गएर से यहीले मृत्यु कम हुई याकर प्रिभेन्टिभ उपायमा सबसे प्रभावकारी उपाय कलक आफ्नो घर आन्जर पान्जर काठी मिठा ठोठा बालकला ढर्ना गठ जो जसिन हाम्रो समाजको बनावट घरको बनावट हेर्दी कल से भन्सक लग्न काठी कटकौरा कठ हाम्रो तराई ओर भन्सक सँग जोड दिलठा उहीमा गहुँ धानको भुस पहिरा चुइटा रहत अरहरको झक्रा ढल जे होइन काठीको रूपमा बेला चाहिँ उसको सापनको बसेरा भित्र अब खाना बनिना भएकोले से काठी दिनको निकार गरी राख्न जब खाना बनिना भयो तब रातको कागर निकाल्दैन दिनखट अझ दिनखनिका रखलासित राटखजाइनी परि सकभर असिन गुइठा काठी धर्न घर खाना बन्ना ठाउँ सेवो लड्कन पहुँचे दुरहे बनिना हो कलसे साफ हमार घरक लग आइनिसिल गई ओ ड्वासर बाट सरसफाई आपन घरक आन्जर पन्जर सिजिठा कलसे निप खन चिक्टार बनाए काकर कलसे जिलबिल हुइल कलसे साफ जिलबिल म न्याङ निसेक्ट जिलबिल म न्याङ निसेक्ट नहुले कोसे ओसिन ठाउँ म जिना मन पिनि परिट ओ अजराज से साफ दुरहे भक्त ओ वर्षे राटिक समय म दिया बार दिए पठा साफ बिना अस ठाउँमा कसे रातको दिया बढेर पठाओ असी कलसे अजलासी साप दुरै रह खोज असहकर डुवासरबाट का हो कलसे सरसफाई एकदम महत्वपूर्ण बाट हो फोहर पटपुराइल रहलसित सफा कलर रह मजा हो खाटक तर भयावजिक सामान धर्न लेकिन उहाँ काबा पेखन कभी पनि हेर्न साप कब कहिया आइकेको ठाहा नि पादै ओ रातखन सुटेल बेला बिस्तारामा या बिस्तारामा सिउचना बेला गुहारले डाब्जाइसक छ ओसिंहखर डुवारी केवार पुरान घुटी जाइबे फाकर हुइसक ठा वही मन फङ पर सक ठा चपक्क निलग्न हुई था उसी ठाउँमा चाहिँ साँप छिर सक ठा वो घरक उपर छट ठा गाउँमा के कुरो खर या खप्र छानेर ठन खप्र घर ठन एल्बेस्टर या आजकल युबी भिएसके बनाएको घर फिर बाटन याकर उपर रहल फङ भन माटीले टुङ्गे चाहे साँप अपनी बिला नि बने त बिला बनुवा त मुस हुई त ऊ बिला भने माटीले बन्द कैदिए पर भिटाओ खप्रक बीचमा जुन खाली ठाउँ रठा वही न कच्चो माटीले टुङ्गेलसी साँप आइनि सेक्ट मुस त अमन सबको ठाउँमा हैरानी गर्ती रह मुस दिनका दिन बिला बनेती रह यही न हाम्रो कम्तीमा फेर अठारमा एकचो ह्यार परल बिला बन्द कर परल महिना याद बा हाम्रो बाबा अङ्क लट्ठीले ठठाक बिला कहाँ कहाँ बा कै कपट्टा लगाइटो बिला बुझ्थे असी करसिले याकरसँग सुत्न बेला मच्छरदानी लगाएको सुत पर सुत्न बेला मच्छरदानी लगेपछि डोरा फाइदा भयो काला जार से बचे सिक्दिन हो मलेरिया से बचे सिक्दिन हो मच्छरदानी सर्पदंश से बचे था यदि सर्प कुण मेरो रातको घरमा आगै कलसे बिस्तारमा जाइनि सिकी खास कि लगन राजिक समयमा गरेचा साप घटना गर्छ काजे कलसी हुँक्र बिस्तारमा नुकल रह रातको कबुकाल उपर से गिर सेक्ठ तरही से खटियामा छे चिउरा फिसेक छ असीमा मच्छरदानी बहुत सहयोग गरेछ साँप पनि बिला बनुवा नि भिट डगर पहिले से कि निग्न भिटन डगरीमा डान्चे कुछु रकल कलसी हुँक्र खुम्जी छ ऊ डगर निङ्गो फिन कटब गुरै से घुम्जी छ रातको उठा बिर हाम्रो टर्चलाइटको छिरी टर्चलाइट आफन चाहिँ ढलर्न चाहिँ राजको उठाबिर पहिला टर्चलाइट बढ्न उबालको सेक्नु चाहिँ ठोप्री बज्न कर्मसी ठोप्री बजेर सिउँको सतर्क भइठ हो ग्लासर घुम्जी छ ऊ टर्चलाइट बार्खन खाटक टर गुवाला ढली कलसे साँप हमन निकट्टा होइला सापन कुसुनी चलेले से पहिले काट निट हाम्रो सापनको पुछी वा डेहीमा हाम्रो गुवाला पर कलसे वा कुनो कठुवा लुगा बा उहीमा सपवा उही टानगिर कलसे मैयन मार्कलाबाट कना समस्क साँप कटना गर्छ नै त खाटक तर रहल साँप निकट गेहुँको भाग खोज्छ हुक्र हाम्रो डोग्या निट जब हुकन डेहीमा छु बिरन कलसे हुकन मैन मार्कलाबा कना लग्छन् ऊ बेला मैन काटकला रह ऊ वर्षे असीको बस्दा उपाय मिलेर से बहुत मजा हुन्छ ऊ डुवासरबाट काबा कि हाम्रो तराई वर गम्बुट मिलट ऊ घरना बान पराई पर राटक बाहिर जाइबेर चर्फी दुर्बा कलसी बुट घालक जाइ ऊ बुट भित्र साँप फेर हसेठ बुट घरना से पहिला झराझुरु पार्क हेरक खेल घरना चाहिँ मै बुटक भित्र बिछी जुत्ता भित्र बिछी देख्लो बाटो वर्षे जुत्ता मजासे झराक उल्टा बिल्टा पार्क भित्र हेरक खेल घरना चाहिँ असीको घरलाई सर्पदंश से बच जाइट डग्रीमा न्याङ्गर फेरि जुत्ता घालक न्याङ्ग पर्था ऊ ठुल लुगा घाल पर्था राटक न्याङ्गर बेर पाइन्ट जिन्स असै घालको न्याङ्गलसे कुछ सुरक्षित हुइसक जाइ सर्पदंश से बच्न उपाय कलक यही सको
15: सर्पदंशबाट बच्ने हुने प्रयास भनेको यही नै
13: आउन डसरबाट लट्ठीले थप थप पर्न टर्च लाइट बढ्न
15: हाम्रो साथी नै हो त्यसलाई त साथी बनाए हुन्छ आजकल मोबाइलको जमाना आएपछि मान्छेले
14: टर्च लाइट त हाम्रो सङ्ग्रह हो आजकल मोबाइलको जमानामा मनी टर्च लाइट बाह्र छरलबाट मोबाइलको टर्च लाइट बढ्दा फेरि हुइठा तर यहीमा एउटा इल्युमिनेन्स निरहट हाँसले बढ्दा टर्च जत्ता सहकार अजार मोबाइलको टर्च निरहट उहीले झुल अजार देठा बडा अजार फक्ठा मोबाइलको टर्च त नि कम अजार देठा ऊ टिक्ना पनि टिकट ऊ वर्ष टर्च ढल्ना बाल पर्न एकदम जरुरी भयो ऊ बिस्तारमा से उठ्ने बेला डरिन बाटो नै हो बिस्तारमा से एकचो उठ फेर बिस्तारमा जाइ बेर सुटे बेर बिस्तार उठा ख सिरन त नझराली ओर्ना बिछेना झराई असी कर्लसे सफा फेर्न हुन् ऊ निष्पिक्ष भ्यू हो जिना हुन् पसिना का मच्छरदानी के परिफी एकदम करी सुतना बेला एकदम बजी थाए महीने बिना मच्छरदानी सुत पड़कर से एकदम डर लगता अपना कहल बात एकदम मजा हो लट्ठी फक फक पर्ना टर्चलाइट बढ़ना हुक्रो कान ले तो नहीं सुनत लेकिन लट्ठी भूं में ठोकल से भाइब्रेशन मिठा वो भाइब्रेशन सात बहुत दूर सम ठा बैठ जैसे कि हमारा कौनो कट्ठो में ठोकली कल से करीब 500 मीटर दूर सम सुन पड़ ओसिया खा धरती में लट्ठी ठोकल से वाकर झनका सात ठा बैठ वो हुक्रो अपने ही अपना सतर्क हुई था वो डगर बदल का द्वासर
4: चलान
3: घर आंध्र पंद्रह सर सफाई करना महत्व सर सफाई करना तरीका वो ध्यान दिए पर्ना बाटक विषय में हम सकुजान बुझाने रख सर्पदंश संबंधी विज्ञ मध्यश प्रदेश जनकपुर हॉस्पिटल में कार्यरत डाक्टर जामुन सिंह प्रति हम आभारी बाकी
7: बर्खा समय खेबा पखारिक मुहका रुपल बाकी मुसुआ आयल कलस आब मुसुआ खुशी सब अथे आई सकता
16: ओहो मोनिका ठाक समझनो घरक आंदर पादर झफास से बाहर से कथा का पहिल बा काट पर ना रह
7: हां असि करी हर बुढ़िया ओ सिन्हो कलस से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर भी तनी भी
16: मीठा हो बुढ़वा असि डाला मदर ध्यान घास पोहर झफास भी था मा साफ नुख बैठल रह सकते ना
7: वो से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तुओ मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुसुसु के पैठनी सेकना में चपट डार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा फूल से साफ पहना का उस्तहा कम हो जाए
16: कल शनिश्चर भी हो ध्यान को फुसर से बा
13: सात बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
17: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सकता
18: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था
19: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का संघ बीपी कोयला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र सहकार में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मिड टाउन का संघ संग विश्वभरिक रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब होकनसे जनहित कला प्रस्तुत संदेश
1: अत्रा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्ति बाकी
2: आज हाम्रा सापनका दशाई मसे बच आपन घर आन्जर पन्जर सरसफाई गर्न महत्व का करबा ओ कसीका सरसफाई कर सेक्दी ठाकना विषयमा बातचित गर्ति बाटी अब सम्रोग श्रोता सहभागी हुकन विचार हो सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर जामुन सिंह से करला बातचित सुँगी
3: पत्रबेलाभर बिन्दु दोस्रा पैठा सुन्न दैन विभाग सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलिन अभियानमा सक्रिय बिन्दु हुमकुमार पहिला भागमा फेसबुक लाइभ मार्फत नेपालमा पारिन विषास ओ साप सक्रिय हुन समय विषयमा जानकारी गरिनुहुन
2: फेसबुक लाइभ ओरिटिकी हुमकुमारका मोबाइलमा नठुकाका घरमा सपदेक पर्लक म्यासेज अर्थात सन्देश आइरहन राजीवको पड़ोसी नथुकाका घरमा सप आइलक कारण हुमकुमार ओ बिन्दु पत्ता लगही कि नाइ हो नागेश नथुकाका घरमा जाख का करही ओ नठुकाका घरमा अब का गुइटी बाटन अब हाम्रो फेलागी बर्दियावर
20: नठुकाका नमस्कार
21: नमस्कार बजारु भैया कहाँबाट सफो काका
22: वहाँ कटोरो मबा सम्झा खाना बनाएकला काठी देखे गइल रहु का चाल करल लागल अस्ति खेर्नु त करैचा सफो पो रह तनि के नि काटन
20: अब यहाँ बुझाई काका भाई आ गई बाजार में जैसे तो सब बात ठीक हो जाए का ऐसी साफ था कतरा पकड़ गई कतरा
22: वे वर्ष तो फोन कही का अपना हम बोले ले खोगा हूँ
20: जी अपना उस लहरी रहनी भाई सब को निकाल भाई वो लट्ठी ढीला नहीं था
22: ठीक ठीक
20: कवर सिरो कवर लट्ठी ने ठोकठाक पड़ने से हिली था क्या ग्रेसा जात का सब एकदम चिम्मन रखा जत्रा चलेन सिक्का खा नि पाला सिमाइल पल रखा कि ज्यादा बाहर आउँदा वन नि हो यार आका यान हो यार यान
0: कहाँ करना था उनकुमार संगरिया एक बार का चोला हो हसी खुशी जीना था हो ड्यूटू बैष्टी करो मई ही गरीचा गाँव से दूर ले जाकर छोड़ दे
22: नहीं कहाँ छाड़ना बात बटवाई थी बजारू यहन तो मारे पड़ल न की और जन थे काटी सी
0: कहाँ मरना बात बटवाई थी बुधराम काका एक अर्थित जीना अधिकार बात जे जैसी का हमार जीना अधिकार बात नी मारा वे वही यहाँ उठी दूर ले जाकर छोड़ दे
5: वो तो बुधराम काका बतानो कन्ना सही बात हो छे साहब डर अपना मन फायदा करना जाती थी
22: कसी फायदा करता जे
5: कसी को मिटाए का अपना खेती पाती करती पनी बाली नाली नुकसानी के करता कही जाओ नोचने हुई था वो ये साहब भोजन खा देता अपना बाली नाली नी बचन कही जा छे साहब तो अपना खतरा महसूस हुई जाती के ना कटना था वो नहीं न की कहाँ करता
6: था वह वर्ष यह कारण ले कर अपन मारा नहीं हुई
23: बिंदु धेरोटा नथुका का घर आजा पाजा कटवा दे सपाजा बरका बरका घास दोसर वहाँ बनवार
5: वो तो क्या हूँ कुमार ये कारण ले कर बिर साप आई थी क्या घर में ना
6: वो नहीं वो तो फिर पर व्यवस्थापन कर पड़ल अनि घास पात सब कु काटा पड़ल वो खार पड़ल कोई खास समझाई
5: वो ठुन कुमार नथुका का यह सुनी जो
22: हजुर बिंदु नानी कही ना
5: काका आप ही गरे जा सपवा यहाँ काकर आए था बात नहन आजकल बर्खक समय बा सब बर्खा दिन में साफ सुखा ठाव में बैसना मन पड़े ये मौसम में अंकनक बैसना बिला में पानी बैसना हुआ पड़े सुखा ठाव खोजी में बाहर निकल
6: वो आहारा खोजना क्रम में जस्त की मूस मुर्गी जसिन खाना का खोजी करना बेला में फिर साफ मानव बस्ती का लगा ही
22: ए तर मुआर घर एक आंगर पाजर काकर आई थी
5: काकर की ना काका मेरी जो कटरा झंझंगेर बात वही में फिर फोर का व्यवस्थापन फिर निकल रही अनि तो साफ हो या तो हुई लगा
6: हो तो अनि असली का रवा से तो साफ नुक का बचना सजिलो पीना फिर जे हो कि नहीं कही तो
22: वो तो हो ना सपा नुक का बैसल बा कही खा था नी पाखा लगे गई ले से तो कटुया तो हुई का हो ना
5: वो मुर्सी अपन घर का आदर पादर बराबर है खास सादारी फोन महीना व्यवस्थापन करी काजे की घर पादर पादर खाली वो सफा ढरल से साफ नुकना ठाव नी पैटा वो नी ऐटा बुझली ना
22: बुझलू नानी मैं काल बिहान में ही घास झपास सब को काट डरम वर्थ व्यवस्थापन करम
6: बैठा काका आप हमरा लागी थे तरा काल से ही निबिसरा का सब को सफा कर बिना
22: बनी भैया
5: बैठू ना हूँ कुमार अपना बैग के पास
6: आप बैठ सेकला सकते पूछा पड़ता था बिंदु
5: वो ठंडा
6: ली जाए ना
5: मीठा हूँ कुमार वो अपना बाव हाथ हमारा लग दूसरों का अपना छोटी जन में सपवा कतना कहीं हुआ
6: वो ठा ये बाव हाथ हमारा डोमिनिया सपवा का आदल रहा आम हिंदा भी नहीं मेटल हो
5: आ हो ना तर अपना घाट अब छत के बीच में कतला कर चुकी पश्चिम डाक खट के सुई ना
6: आ ना आप डाक खट के सुहाई थी ना कतरा हंसे ठगा
5: नहीं दत्ती से कर दुकान हूँ कुमार कसम नहीं ये फोन कर ये अरुणा पो कर टीका हेलो अरुणा हजुर का हूँ सुखा मना सपवा काटर हूँ ए ए ले ले निहत बढ़ाओ हमरा आ गई दी हम कुमार हमन तो कार्यली ज्यादा पर ना हुई सुखा मना सपवा काटर हूँ
6: ए वो नहीं लेनी मारे जाए
3: नथुक काठी कटकोरा में गरीचा सपन कर रहा हम्र पैरा सुकल घास काठी असिया धरबे सैकल सम घर सित एक दूर धरपन बाद बिंदु अभम कुमार हमन सिखिला सापन मार निविट साप बानी खाए ना मूस लक्ष्मी आज सिंचिदवा खाई लिख किसान सहयोग करना हो वातावरण संतुलन कर मदद कर बात फिर आज छलफल मसी सीखी
18: संग संग बिंदु हो कुमार सर्पदंग समसे बज घर आजर पांदर लथ्यांग घास ब्याल ब्याल म काट का हटेना फोहर का उचित व्यवस्थापन कर
2: अन्न भण्डारणमा सापन आकर्षित हुइनी ढिएक लाख हाम्रो करपर्ना बात फे सिखैलबाट और कार्यक्रममा फे बिन्दु भङकुमार बीचका बातचितमा फे सर्पदंश सम्बन्धी आकुर लौ जानकारी पक्क फे पाजिने बात सहभागी श्रोता यही विषयवस्तु हो छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका का आज प्रस्तुति यी दोस्रा भाग बसे मई पुष्पा
19: म मई देखराज बिदा मामेटी और अङ्कमा सापनको दशैमसी बस्न उपाय विषयमा और नौ जानकारी लेख फेरि चौबाटी आजको लागि बिदाटी नमस्ते
2: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक र बटुलक उहाँहुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजना तर्फसे अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचारकै छ माननीय हुई
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत
9: गरेको भए होइन गरिहाल्नुहोस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
10: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
9: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
10: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
9: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
10: ई सेवा सबै सधैँ सँगै
11: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा
24: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ MDBS MD इन्टरनल मेडिसिन DM कार्डियोलोजी
25: डाक्टर आउने दिन असार 7 गते आइतबार समय बिहान 10 बजेदेखि
24: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
25: उपचार हुने समस्याहरू
24: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
25: साथै मुटुको इको रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 9826014300 र 9846349785 सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: चेली हेदी दै बालाई लोटरी पढ्यो भनेके बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो
1: धैदै बा तुमले लोटरी भर्राई थ्या ब
2: आथिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो ब
1: कभै नभर्या लोटरी कसरी पढन्छ ब
3: बा ईशा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन
4: सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ
3: सिद्धार्थ बैंक पठाइ जनहितमी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
8: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
9: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीत 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाव सम्रपात्र और नेपाली पात्र मफे सुन डिरहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति के 500 साधारण सभा सम्पन्न। थारू संस्कृति संरक्षण के लाग सरकार हां कानूनियों बजट के संबोधन हुई पड़ना सरकार वाला के कहे। सिंचाई तटबंध और नदिया व्यवस्थापन सरकार की उच्च प्राथमिकता में। ओ विश्वकप फुटबल प्रायोगिक संघ टर्की प्रायोजित। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति के 500 साधारण सभा हुईवा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष भरत शाह की अध्यक्षता में हुलक साधारण सभा उद्घाटन करती प्रदेश प्रमुख नजर मियाई सामाजिक बौद्धिक समाज हुलक पत्रकारिता क्षेत्र अनुशासित बौद्धिक हुलक यह देश के विकास में भारी योगदान रक बोटिलोट पत्रकार आपन बात सुने न वो उदाहरण सुन्ना फे करपना बोटिलोट विशिष्ट अतिथि महासंघ के केन्द्रीय उपाध्यक्ष नीतू पंडित के प्रादेशिक संरचना बैठी मीडिया के विकास के लग राज्य के दायित्व पूरा नहीं हुलक बोटिलो राज्य संरचना की मीडिया के विकास हुलक गुनासो कल पत्रकार सामाजिक संजाल संघ प्रतिस्पर्धा कलक पलक बुटेटी भ्रामक सूचना के बढ़े म पत्रकार सरपना पलक बुटिलो अब के मीडिया के संकट पार लगेना सट्टा अब के सरकार नीतिगत रूप में मीडिया धराशयी बना आवास दबैना खोजलक महासंघ आंदोलन अलबालक बुटिलोट कार्यक्रम में महासंघ के केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र बलायर पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश के अध्यक्ष शुक्र ऋषि चौलागे प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख सानुराम भट्टराई पूर्व केन्द्रीय सचिव हेमकर्ण विक पूर्व केन्द्रीय उपसभापति चित्रांग थापा पूर्व केन्द्रीय सदस्य मनमोहन सुवार प्रेस काउन्सिलिङ नेपाल के पूर्व केन्द्रीय सदस्य हरि जोशी कर्ण शाह दीपबहादुर छत्याल पूर्वाध्यक्ष अर्जुन शाह सल्लाहकार योगेश रावल मिनबम जिलाध्यक्ष हुक्र पत्रकार महासंघ कैलाली के पूर्व अध्यक्ष जगत साउत सामुदायिक रेडियो प्रसारक सुदूरपश्चिम के वेद प्रकाश तिमुन सेना प्रेस यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष टेकेन्द्र देउवा प्रेस चौतारी के प्रदेश महासचिव भानुभक्त आचार्य हरीश विक लगायत बोलने रहे। स्वागत उपाध्यक्ष मान बहादुर साउत कल सेफे संचालन महासचिव शिवराज भट्ट कल रहे। सम्मान नगरस के पत्रकार म चित्रांग थापा मनमोहन सवार एगिराज यात्री लक्ष्मीराज पाण्डे माधव सिंह धामी हरिप्रसाद जोशी वीर बहादुर चन्द खेम भण्डारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमित बागचन सिद्धराज भट्ट डीआर पन्त संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन शाह निवर्तमान अध्यक्ष योगेश रावल सम्मान कलबाट निसर्ग अस्पताल नवजीवन अस्पताल चैतन्य पाठशाल सम्मान कलबाट। संविधान सभा सदस्य मालामती राणा थारू कला संस्कृति प्रबंधन के लाग कानून बनाके तीन तह के सरकार बजेट विनियोजन कर पना बोटिलो टीकापुर सिटी हल में चलती रहल थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव में आयोजित संवाद में बोटी राणा के असिन बोटिलो अधिवक्ता नाथुराम कठरिया नेपाल में हुईलक भाषा भाषी देश के लाग फूलबारी हुईलक बोटिलो संविधान में मौलिक हक के रूप में भाषा संस्कृति के संरक्षण व्यवस्था हो मेला महोत्सव संस्कृति विकास उठी रह बोटिलो थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नंबर 1 उपसभापति रमेश चौधरी कला संस्कृति पहिरन के हिसाब धनी रलक बोटिलो गीतकार तथा शिक्षक ठाकुर प्रसाद चौधरी मेला महोत्सव कलक मयन के ऐना हुलक के स्थानीय प्रकृति और संस्कृति के प्रबंधन हुलक बोटिलो वहां के थारू नेवार जाति संस्कृति रूप में धनी रलक बोटिलो थारू कल्याणकारी के केन्द्रीय सदस्य राम कुमारी चौधरी देखा सिक्किम अलग अलग थारू संस्कृति विषय नैना बोटिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी ओम बहादुर राणा अस्वाभाविक रूप में कलक काज सरुआ के निर्णय बदर हुईवा प्रहरी भित्तर बिचौली के मार्फत आर्थिक असूली कथित काज सरुआ कलक विषय सार्वजनिक हुईवा प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देश वहां निर्णय कार्यान्वयन कलक कहिलवा प्रहरी प्रधान कार्यालय के निर्देशन मार्दण्ड विपरीत कलक काज सरुआ बदर हुईलक सुदूरपश्चिम के प्रहरी नायब महानिरीक्षक सानुराम भट्टराई जानकारी दिल वहां के अस्वाभाविक काज सरुआ हुईलक पाइगिल प्रदेश प्रहरी कार्यालय उक्त निर्णय कार्यान्वयनका निर्देशन अलग बोटिलोबाट उहाँकी डीआईजी राणा कलकका सरुवा बारे आन्तरिक छानबिन समेत हुन जानकारी दिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयकी निर्देशन पार्षद सुदूरपश्चिम प्रदेशकी वर्तमान प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सानुराम भट्टराई अस्वाभाविक रूपमा कलक काज सरुवाकी निर्णय मदर कलक बुटिलोबाट उहाँकी शुक्रबार नै प्रदेशकी सक्कु जिल्ला प्रहरी कार्यालय डीआईजी राणा सरुवा हुर्पासा कलक काज सरुवा कार्यान्वयनका निर्देशन दिलबाट खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछा फेरि सेवि सुनतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफे शाखा टिकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
0: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सपाकी औपचारिक अन्तिम बैठक आज यहाँ शुरू हुन महाधिवेशनमा लैजाना एजेण्डा पारित गर्न अन्तिम बैठक भरतपुरकै डियालो फुडल्याण्डमा शुरू हुन बैठक आतबार से हेहुना महाधिवेशनकै प्रतिनिधिकै अन्तिम नामावली पारित गर्न प्रवक्ता मनिष झाले बोटिलोबाट उहाँकै अनुसार बैठक विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नबाट उहाँकै केही अन्तिम औपचारिक बैठक हो भएपरि अहिलेसे अनौपचारिक बैठक बैठना सेक्ना इनिसिया गर्ने सचिवालयकी केन्द्रीय समितिकी लाग पठेलक एजेण्डाकी उप छलफल गर्के आज पारित हुना बुटेलोबाट ओह एजेण्डा महाधिवेशनमा लग्न हुँदा उहाँकै अनुमोदन पाछा कार्यान्वयन हुना उहाँकै कहाइबा विधान संशोधन गर्की केन्द्रीय समितिकी संख्या बढ़िना लग्ला सफे महिला सहभागिता आफै बढ़ेटीबाट बैठक सभापति रवि लामी छानेकी अध्यक्षतामा शुरू हुइल हो सरकार आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15,776 हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्दै देशकी कुल सिंचित खेतीयोग्य क्षेत्र 64% पुग्न लक्ष्य निर्धारण गर्नबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सिंचाई विस्तार लदाय नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरव योजनाकी कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता मण्डलबाट हाल देश कुल 15,87,910 हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुगलबा सिंचाई योग्य भूमि मध्ये वर्ष भन्ने सिंचाई सुविधा पुगलक भूमि 5,32,090 हेक्टर रहलबा कृषि योग्य जमीनमा लिफ्ट व जलाशय सिंचाई सुविधा 5,671 हेक्टरमा पुगलबा निर्माण के क्रम मरलक तथा मरमत सम्भार गर्न बनाए आयोजना हाफे ओत्रह प्राथमिकता मन्त्रकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भट्टराई श्रेष्ठ जानकारी दिलबाट उक्त मन्त्रालयकी अनुसार संघीय सरकारकी कार्यभित्र पर्न 84 छेउ लड्डेमा हालसम्म 1,524 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकलबा हो कार्यमस्य 13,821 हेक्टर जम्मा वहिलबा आगामी आर्थिक वर्षमा थप 70 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गर्के 210 हेक्टर जमिन उकस्ना लक्ष्य धलक मन्त्रालय जनाइलबा सरकारकी सिंचाई क्षेत्रकै पुरान तथा रणनीतिक महत्वको योजना समयमा सम्पन्न गर्न विशेष जोड़ दिलक मन्त्री श्रेष्ठकी कहेवा निर्माण व्यवसायीकरण गति लिन नैसेकलग मेरी बवई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना हो सुनको सीमरी डाइभर्सन आयोजना गति लिन सम्पूर्ण जोड़ बल लगाइन मन्त्रालयकी तयारी कलबाट सिक्ता सिंचाई आयोजना तथा रानी जमरा कोरिया सिंचाई आयोजना उच्च प्राथमिकता मण्डलबाट सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना चन्द्रनहर कमला सिंचाई नारायणी सिंचाई आयोजना गण्डक सिंचाई प्रणाली तथा कोशी पम्प सिंचाई के मर्मत सम्भार पुनस्थापना समेत प्राथमिकता धरलबाट सिंचाई के राष्ट्रीय गौरव के योजना के लागि 10 अर्ब 24 करोड़ 68 लाख बजेट विनियोजन कलक मन्त्रालय जनेलवा खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछा फेरसे विश्वन्त्रीय विश्रामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कमरा घूम जाए था पाए
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
10: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
10: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
10: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
9: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
10: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
10: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
11: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
12: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
0: फिफा विश्वकप फुटबल 2026 अन्तर्गत आज हुने खेलमा प्रज्ञा टर्की पराजित कलबाट अमेरिका के सान फ्रान्सिस्को एरिया स्टेडियममा हुने खेलमा प्रज्ञा टर्की 1-0 गोल अन्तर्गत पराजित कलबाट हटलकसँग टर्की प्रतियोगितामा से बाहिरलबाट पराज्ञा जितमा माटियास गालर्जा नायक बन्न उहाँकै खेलमा शुरूआत दोस्रो मिनटमा कलक 1 गोल नै प्रज्ञा केलाक निर्णायक गोल साबित हुँदा खेलकै पहिलो हाफकै अतिरिक्त समयमा मिगुएल अल्मिरोन लाल कार्ड पाकी मैदानमा बाहिरसँग पराज्ञा 10 खेलाडीमा सीमित हुन् अगर पाछा टर्की नियन्त्रण दबावमा थर्के गोल गराउनै सेक्लै हेजिटसँग समूह डी मर्लक पराज्ञा शीर्ष 3 अङ्कमा बटलबाट यही समूह मर्लक अमेरिकाकै 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै विश्वकपकै नक आउट चरणमा प्रवेश कर्सेक्लबाट समान 2-2 खेल खेलकी अस्ट्रेलिया 3 अङ्क जोड्दी अङ्क तालिकाकै दोस्रो स्थानमा रहेछ समान 3 अङ्क नै बटुलक पराज्ञाकै तेस्रो स्थानमा रहल्बा समाचार सँग खोज खबर वरल दिनासे पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर से एक चो नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूर पश्चिम प्रदेश समिति के पाँचौं साधारण सभा सम्पन्न थारू संस्कृति संरक्षण के लायक सरकार कानूनी बजेट संशोधन विपणा सरकार वाला के कहे सिंचाई तथा लद्दी व्यवस्थापन सरकार की उच्च प्राथमिकता में विश्वकप फुटबल पारोग्या संघ टर्की प्रायोजित लीजा बकला खोज खबर था प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लीजिए बकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई टू एक पास छह बजे की खोज खबर सुना सीखी सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफरेंस सुनती रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: ओए रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्मी बात लिखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं कातर लक्ष्मी खा देती अब ना
0: एक तो तपावा का मुर्गी ना खा रखे लक्ष्मी से डुरेले से बक्सा की आनो हरी छट्टा
1: तापन जिसका ये चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आए लागी कलर से भगे दी
0: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खोज लखो का
1: आरम कीड़ा फटिंदा मुझ साफ सीधे नीचे आकर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे बेन अपना दाखी दूर रिना
0: हो बिना था का करना हो तपुआ देखती की डर नागर लगना रही सा देव तपुआ तो अपन ना घूम का बारी वो कर दी था
1: हमारे के सापन से डरे ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पोती रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नहीं लगाए व नहीं जीस के साप मन देख डरे था नीचला खा दूर रह से साप नहीं डस्ट तर मुखर खेना फाजा बाहर निस्कल में घास काटा बेल छाला बेल ड्यांगा बेल छू बेल से मन मही मारकवार कना समझ का पट्टी रक्षा कना क्रम में साप दस लाख अठ मन सापन व्यक्ति की मारक लाग अठ उसी का कर बेल फिर साप दस लाख अठ
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
6: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
5: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
6: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
5: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
6: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
7: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 9868147979 9824625232 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824678225
8: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हराए।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुनी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ

0: आई बुढल्ला सुन्छ कि नै वा नन्दी भुवा जागिनी न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुगर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846939261
2: टीकापुर नगरपालिका को निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड बारे अत्यंत जरूरी सूचना टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपस

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: जिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
1: ए, यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
1: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलथु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइगो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
8: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: के कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं छिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस कटस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
4: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
3: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
4: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
3: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
4: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
3: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
4: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाइ लगायतको उपचार,
3: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
4: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

महाराज परीक्षित का प्रतिश्रुति स्वामी लिया गया गर्ण बोलो तो सौन कादृशी प्रणाली बने रहे महाराज परीक्षित लाए श्रीमद भागवत को महत्व को बारे सारा कुरा को प्रमाण गर्ण बोलो तो सौन कादृशी प्रणाली और इसी प्रसंग को बीच में अब कट्टी देखने तला सातलो को परिकल्पना गर्ण महाराज कट्टी देखने तला तल बीतल सुतल तला तल सातल पातल महापातल को परिकल्पना गर्ण कट्टी देखने माथि भूरलोक भोरलोक मोहरलोक जनलोक तपलोक सुरलोक और सत्यलोक को परिकल्पना गर्ण विश्व ब्रह्मांड सारा आपू में निर्धारित निर्णय गर्नु भनिकन राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी ने भागवत को मूल सिद्धांत में फरक नपर्ने मत लिया प्रमाण कराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने समन को कथा है सत्यबाट जय बोलो श्रीमद् भागवत महाप्राण को।

महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने बताओ वैसे प्रसंग को बीचवा अब यो विश्व ब्रह्मांड उत्पादन को विषय को लाई प्रश्न गर्नु भएको छ भगवान यो विश्व ब्रह्मांड कसरी उत्पादन भयो यसदेखि पछाडिबाट सृष्टि को प्रकरण में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र यो चार जात को प्रकरण में व्याख्या गरेको छ भिन्न भिन्न मत को प्रभाव बाट यिनको विषय में प्रकाश पारी बस्छ कि भनिकन विनती गर्ने वाला राजा परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी ने बड़ा गंभीर वाणी में आपको भाषा प्रस्तुत करते हुए भन्ने सम्बन्ध को कथा यह सद्य जय बोलो श्रीमद भागवत महापुराण को।